तह हर हर हर रस भोगनी रहाव। सुर्ग पवित्रा मृत पवित्रा पयाल पवित्र अलोगनी। आज्ञाकारी सदा सुख पुंचय जत कत पेखो हर गुनी। नह शिव शक्ति जल नहीं पवना तह आकार नहीं मेदनी। सदगुर जोग का

ला पंजवा पेटत संग पार ब्रह्म चित आया, संगत करत संतोख मन पाया। संत हैं चरण माथा मेरो पौत, अनक बार संत हैं डंडौत।

गया खिन मह वेश करहे नटुआ ज्यों मोह पाप महंगलत गया। इत उत माया देख पसारी मोह माया कै मगन भया करह विकार विथार कन्हेरे सुरत शब्द बिन भरम पया। हौ मैं रोग महा दुख लागा गुरमत ले वह रोग गया सुख संपत कौ आवत देखें साकत मानं अभिमान पया जिस

गुरमुख केती शब्द उधारी संत हो रहाओ। ममता मार हो मैं सुख है त्रिभवन जोत तुम्हारी, मनसा मार मने मह राखै

हर भाणा गुर पहाया मेरा हर प्रभ करे शाबास जियो भगत सतगुर पुरख सोई जिस हर प्रभ भाणा पहावै जिस हर प्रभ भाणा पहावै आनंद अनहद वजह वाज।

अनंत तरहा नाम नरहर निदान जिनकै रस भोग एक नारायणा रस रूप रंग अनंत बीठल सास सास त्यायणा।

प्रभ बिपत निवारण तिस बिन अवरना कोय जियो सदा सदा हर सिमरिय जल थल महियल सोए जियो जल थल महियल पूर रहया एक निमख मन होना विसरै गुर चरण लागे दिन सभागे।

कहदा सहो कह रही है बाले, कह आवहो कह जाहो, नानक बोले सुनबै रागी, क्या तुम्हारा राहो। कट कट वैसे

प्यारो दर्शन पेख करहो जोगिंद्रा मुंद्रा चोली खिंथा बारह अंतर एक सरे बहो खट दर्शन एक पंथा इन विद मन समझाइए पुरखा बाहुड़ चोट ना खाइए नानक बोले गुरु।

सुख नारद बचन सब सृष्ट करेन सच्चै लाए सच लगे सदा सच संभालेन नानक आए से परवान पए नानक आए से परवान पए जे सगले कुल तारेन महला तीजा गुरु जिन्ना का अंधला सिख भी अंधे कर्म करें ओए भाणे चलन अपने नित झूठ।

पौड़ी। मनमुख मोहगुबार है दूजै भाए बोलै, दूजै भाए सदा दुख है नित नीर विरोलै। गुरमुख नाम ते आई है मथ तत कढोलै, अंतर प्रगा

पंजवां, कबीरा हमरा को नहीं, कबीरा हमरा को नहीं, हम किस हूं के ना है, जिन हो रचन रचाया, तिस ही माहे समाहे पौड़ी, सफल्यो बिरख सुहा।

सुख मन पोचन हारी रे, तीर्थ बरत नेम सुच संजम, रव सस गहने देओ रे, सुरत प्याल सुधारस अमृत, इहो महारस पेओ रे। निचार तार चुवै अत निर्मल,

गुरमत नाम दमोदर पाया, हर हर नाम उर तहरे, हर हर कथा बनी अत मीठी, ज्यों गूंगा गटक समहरे।

हर हार हर उड़तारियो जन नानक नाम समाया माली गौड़ा महला चौथा जप मन राम नाम सुखदाता सतसंगत मिल हर साध आया गुरमुख ब्रह्म पछाता रहा।

हर शरण आयो दास तेरा प्रभ ऊच अगम मुरार कडले हो पौजल बिखम ते जन नानक सद बलिहार।

मन हर भगती संग सीवना, मात्या हर रस महराते, तिस बहुड़ना कबहू औखीवना, मिलियो तिस सर्ब निधान।

सुख दुख ही तय अमर अतीता गुरमुख निज कर पाएंदा शाम वेद रिग जुजुर अथर्वण।

निर्मल शब्द कमाया, अदृष्टि अगोचर नाम अपारा, अतरस मीठा नाम प्यारा, नानक को जोग

भगत हेत गुर शब्द तरंगा, हर जस नाम पदार्थ मंगा। हर पावै गुर मेल मिलाए, हर तारे जगत सबाया। जिन जप

तो भव जल जगत शब्द गुर तरिया अंतर की दुविधा अंतर जरिया पंच बाण ले जम कौ मारे गगनंतर तनख चढ़ाया साकत नर शब्द सुरत क्यों पाई है शब्द सुरत बिन

है देखा। आप अतीत अजोनी संभव नानक गुरमत सो पाया। अंतर की गत सतगुर जाने सो निर्भव गुर शब्द पछाणे।

पूर्ख मन हाथी पाखंड धर्म प्रीत नहीं हर स्यों पाखंड धर्म प्रीत नहीं हर सों गुर शब्द महारस पाया कुदरत देख रहे मन मानिया गुर शब्द ही सब

विचार है, मर मर जम है शब्द ना विचार है, अंतर माया मोह गुबारा ज्यो सुपने सुध ना होई है। एक पंचावार शब्द है लागे सतगुर आए मिले।

जहै। अंतर्मैल अज्ञानी अंधा क्यों कर दुत्तर त्रिजय हे। वेद बाद सब आख बखाण है, ना अंतर भीजै ना शब्द पछाण।

नवनज नाम वस्या तट अंतर शोड्या माया काला हाहे। रैयत राजे दुर्मत दोई बिन सतगुर सेवे एक ना होई। एक ते आयन

है आन दिन गुण रव है दिन राती, आन दिन गुण रव है दिन राती, रसना हर रस पाया, शब्द मर है सिमरन सवार है, हर के गुण हृदय उरतार है, जन्म सफल

सहजे गुण रहे दिन राती ज्योति ज्योत मिलाया। काया बिरख पंखी विच वासा अमृत जुग है गुर शब्द निवासा। उठ है न मूले न आव है न जाही निज घर वासा पाया। काया सुध है शब्द विचार।

गुण निदान मन तन महरवया, जन्म मरण की जोन ना पभया, दुख विनाश किया सुख डेरा, जहां तृप्त रहे आगाई है।

की है। मन प्रतीत बनी प्रभ तेरी, बिरस गई हूं मैं मत मेरी, अंगीकार किया प्रभ अपने जग में।

तिस ही सुख तिस ही ठकुराई, तिसह न आवै जम नेड़ा, कीमत कागद कही ना जाई, कहु नानक बेअंत गुसाई।

गर्भ अग्न मह जिन्हें उबारिया रतत गर्म मह नहीं संघारिया अपना सिमरन दे प्रतपालिया ओ सगल घटा का माल का चरण कमल शरणाई आया साध संग है हर जस।

हर अगम अगाधा निःचल नाम निदान है जिस सिमरत हर लाधा निःचल कीर्तन गुण गोविंद गुरमुख गावाधा सच

सादिन उस्तत निंदा दो विवर्जित तजहो मान अवधाना उस्तत निंदा दो विवर्जित तजहो मान अभिमान लोहा कंचन सम कर जान है ते मूर्त भगवान।

बिन कबहु न छूटस, बिरथा जन्म भयो रहाओ। तन मह काम क्रोध हौ ममता, कठिन पीर अत भारी। गुरमुख राम जपहो रस रसना, इन विद तार तू तारी। बहरे करन अकल पई होची, शब्द सहज नहीं बूझया। जन्म पदार्थ मन मुख हारिया।

बिन गुर शब्द मुक्त कहां प्राणी, राम नाम बिन उर्ज मरे। दंड कमंडल सिखा सूत धोती, तीर्थ गवन अत भ्रमण करे। दंड कमंडल सिखा सूत धोती, तीर्थ गवन

बात खोई। बहले पेख पवह दिन राती हों मैं रोग न जाई। पढ़ पढ़ लू जह बाद बखान है, पढ़ पढ़ लू जह बाद बखान है। मिल माया सुरत गवाई सतगुर सेव है।

जाने दैत पुत्र प्रहलाद गायत्री तर्पण किसु ना जाने शब्दे मेल मिलाया रहा। आन दिन भगत कर है दिन राती दुविधा शब्दे खोई सदा निर्मल है जो सच राते सच

68 सुरसरी। हम मूर्ख को हर कृपा करी, जन नानक तारे ओ तारण हरी। पैरों महला चौथा। सोकृत करनी सार जप माली, हृदय फेर चले तुध नाली। हर हर नाम जप हो बनवाली, कर कृपा मिल हो सतसंगत। टूट गई माया जमजाली, रहाओ गुरमुख सेवा काल जिन काली। तिस घड़िए शब्द सच्ची टकसाली। हर अगम अगोचर गुर अगम दिखाली, विच काया नगर लद्धा हर पाली।

पंजवां कोट मनोरथ आव है हाथ जम मार्ग कै संगी पांठ गंगा जल गुर गोविंद नाम

नानक कौ खुद खसम मेहरवान, अल्लाह ना विसरै दिल जी प्राण, पैरों महला पंजवां, साच पदार्थ गुरमुख लहो।

ठाकुर छोड़ दासी को सिमरह मनमुख अंध अज्ञाना हर की भगत करह तिन निंदा है निगुरे पशु समाना जियो पिंड तन धन सब प्रभ का साकत कहते मेरा अहम बुद्ध दुर्मत है मैली बिन गुर।

पंजवां निकट बुझ है सो बुरा क्यों करे बिख संचय नित डरता फिरे है निकटे अर भेद ना पाया बिन सतगुर।

हम सोते। प्रभ तू है ठाकुर सबको तेरा, ज्यों पावे त्यों करहे निबेरा, द्वितीया नासत एक रहे।

सो बड़ पहागी जिस गोर मस्त हाथ रहाओ। जिस नाम हृदय तिस कोट कई सैना, जिस नाम हृदय तिस सहज सुखैना, जिस नाम हृदय सो शीतल हुआ, नाम बिना त्रिग जीवन मुआ। जिस

गुरमत खोज परे तब पकरे, तनसाव तरास उबरया। पाखंड परम उपाव कर थाके, हृदय अंतर माया माया, साधु पुर

महे समाहे ज्यों पावे त्यों राख ले सुख नानक पूरा गुर मिले। बसंत महला पंजवां।

पंजवां गुर चरण सरेवत दुख गया पार ब्रह्म प्रभ करी मया सर्व मनोरथ पूर्ण काम जप जीवै नानक राम नाम सारुत सुहावी जित हर चित आवै।

सहज अवल धूड़ मणि गाडी चालती पीछे तिनका ले कर हांकती। जैसे पनकत थ्रू टिट हांकती सर धोवन चाली लाडली रहाओ तो भी तो वह बिरह बिराता

कर मेले जिस सतगुरु सो जन हर हर अमृत नाम चखासी जो जन सेव है सद सदा मेरा हर हरे तिनका सब दूर।

रहाओ। चरण कमल बसाए हृदय एक स्यों लिवलाओ। साध संगत हो हे निर्मल बहुड़ जोन ना आओ। जियो प्राण आधार तेरा तू निछावे थाओ। सास सास समा

पंजवां साचे सतगुरु दा तारा दर्शन देख सगल दुख नाश है चरण कमल बलिहारा रहाओ सत परमेसर सत साध जन निहचल हर का नाओ भगत भावनी पार ब्रह्म की अविनाशी गुण गाओ।

एक नाम कलमल दगद होहे खिन अंतर कोट दान इशनान कलमल दगद होहे खिन अंतर कोट दान इशनान रहाव आन जंजार वृथा श्रम कालत बिन हर भोकट।

सनकादिक ब्रह्मादिक गावत गावत सुख प्रहलाद पीवत अम्यो मनोहर हर रस जप नान।

नौ तन प्रीत सदा ठाकुर स्यों, आन दिन भगत सुहावी, मुक्त भय गुरदर्श दिखाया, जोग जोग भगत सुभावी।

सुखदाता, आपे दया करे सुखदाता, जपिए सारंग पाणी, आवन जाना बहुड़ न होवे, गुरुमुख सह

तीर्थ अड़सठ मज्जन नाई सत्संगत की तूर परी उड़ नेत्री सत्संगत की तूर परी उड़ नेत्री सब दुर्मत मैल गवाई रहा जाहर नवी

तेरा मन बिगसै हौ तिन कह सद बल जांत। ज्ञानी हर बोलह दिन रात तिनकी तृष्णा पूख सब उत्तरी जो गुरमत राम रस खांत रहाव। हर के दास साध सखा जन जिन मिलिया लह जाए प्रांत। ज्यों जल दुध पिन पिन काढ़ है।

कान हर बरस सगल जग छाया, पय कृपाल प्रीतम प्रभ मेरे, आनंद मंगल सुख पाया रहा, मिटे क्लेश तृष्ण सब बूझी।

हम कमल पुत मीन ब्यासा तप तापन पूज करावै गो जो जो भगत होए सो पूजहो परमन परम चुकावै गो जात न जात देख मत परम हो सुख जनक पग